0: देखो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी, शुद्ध नमक देना। शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम रेपुरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम रेपुरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।

0: शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: तो ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण। 102.3 FM. இன்வெஸ்டிங்கோட பாடத்தை ஆரம்பிக்கலாம்.